जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

0: बड़ा फर्क पै सकता है कि वो एक लिमिटेड लिमिट टाइम लिमिट्स और जिन्हों पर कह दी कि टाइम टेबल बना के चल पैन कि हाँ असी इन्ने के टाइम ली ये चीज यूज करनी है बस दैट्स ऑल।
1: हाँ
0: तां
1: जी
0: ये भी और बच्चे वो चीज करके समझते उन्होंने मतलब बच्चों नु ये चीज दी बिल्कुल क्योंकि लैक ऑफ मोटिवेशन है जिदा कि असी पहला गल करिए कि जो बच्चों च लैक ऑफ मोटिवेशन है मोटिवेशन नहीं है उन्होंने कोई अंदरूनी तौर पे काम करने दे लिए कुछ खिच है ही नहीं उन्होंने जिंदगी का कोई उद्देश नहीं उद्देश
1: बिल्कुल जी
0: ही नहीं वो भटक रहे ने तो
1: हाँ जी
0: वो उन्होंने सारिया चीजा वो जिड़िया स्टडी वगैरह सब कुछ बोझ लगता है कि यदा तो
1: बिल्कुल
0: कोई फायदा नहीं है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: बट आई एम श्योर कि जदों एहो जे बच्चे जाके अगे जाके थोड़ा ग्रेजुएशन काइंड ऑफ जदों एहो जे बच्चों नूं थोड़ा जा पता लगदा कि हाँ वाकई कुछ उन्हां नूं मोटिवेशन दा सोर्स मिलदा कि हाँ भी वाकई असीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे सीगे हुण जो टाइम है असीं अगर कर लिए तां एहो जे बच्चे बहुत अग्गे वध जांदे ने बस
1: बिल्कुल
0: एक
1: जी
0: मोटिवेशन दी लोड़ हुंदी है उन्हां नूं
1: सही राह दिखाने की लोड़ है।
0: बिल्कुल उद्देशहीनता ही उन्हां नूं जिहड़ी है वो स्टडी दे प्रति उन्हां दा जिहड़ा नकारात्मक एटीट्यूड है वो उद्देशहीनता तो ही पैदा होंदा है। जब तक उन्हां दा उद्देश नहीं है कोई गोल नहीं है लाइफ दे विच तां वो अपनी स्टडीज नूं सब कासे नूं बोझ समझणगे
1: सही गल है जी
0: ते
1: हाँ
0: सिक्ख्या दा सिर्फ मंतव ये नहीं है कि वो तुहानूं सिर्फ तुहाडे रुजगार तक लेके जाएगी बल्कि जो 10वीं 12वीं तक दी सिक्ख्या है वो तो सानू एक अच्छा नागरिक बनने दे लई भी बहुत जरूरी है।
1: जरूरी है। हाँ जी हाँ जी
0: सानू अपने सारे जेड़े कर्तव्य है साडे देश दे प्रति जो कर्तव्य है या फिर साडियां जेड़ियां रिस्पांसिबिलिटीज ने असी जो की
1: हाँ जी
0: करना है वो सारियां चीजां और सानू केड़े केड़े अधिकार संविधान ने सानू दिते ने उन्हां सारियां चीजां बारे जाणू कराउण दे लई जो साडा 10वीं 12वीं तक दा सिलेबस है वो काफी है अगर बच्चे इस नू इंटरेस्ट लैके पढ़न।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: बट बच्चे अक्सर इहो जिहा नहीं करदे उन्हां नू सिर्फ एक रट्टे वाली आदत पै चुकी है साडे
1: नंबर
0: जो
1: लाइन तक सीमित हो जाने।
0: हाँ बिल्कुल वो समझते हैं कि असी एज इट इज रट्टा मार के असी अगर किताबां चो देख देख के लिख दांगे तां उहदे नाल साडे बस नंबर वध जाण बट उहनां नूं कुछ नवां लर्न करन दी जो एक होना चाहिए खिच होनी चाहिए कि सानू लर्न असी की कीता वो चीज बहुत घट है बच्चों च।
1: हाँ जी एक गल होर भी देखी है जिहड़े अज दे विद्यार्थी ना वो लंबा समा पढ़ाई करन दे मूड च नहीं हुंदे।
0: नहीं हुंदे
1: उहनां
0: जी
1: दा ये हुंदा भी 10वीं 12वीं कर लिए तो उस तो बाद कोई कम मिल जाए चंगी नौकरी मिल जाए जिहदे चंगा पैसा आउंदा होवे ते असीं अपनी जिहड़ी हैगी है अगली लाइफ मजेदार गुजारीए।
0: बिल्कुल
1: ते उहनां
0: बिल्कुल
1: दे ज्यादातर मापे भी इस तरह सोचदे है कि बच्चे साडे जिहड़े हैगे है थोड़ा टाइम पढ़न ते उस तो बाद रुजगार वल पै जाना।
0: हाँ
1: इस
0: जी
1: नु तुसी किस नजरिए तो देखते हो?
0: देखो बिल्कुल मैं पेरेंट्स नू और बच्चों नू जो वो सोच के ये अप्रोच अपनांदे हैं वो
1: हाँ
0: सोच
1: जी
0: तो सही है कि साडे बच्चे जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जिन्ना कि भी पढ़ना है पढ़ के कम लग जान बिल्कुल सही सोच है
1: हाँ जी
0: पर जो अप्रोच अपना रहे ने ना वो बिल्कुल गलत है। ओदे विच की है देखो बच्चे साडे कोले भी अज साडे नाल जिला रोजगार दफ्तर दे नाल साडे नाल बहुत सारे जिहड़े बच्चे जुड़े हुए हैं वो सिर्फ
1: अच्छा जी
0: प्लस टू पास पास ने
1: अच्छा जी
0: तां सिर्फ प्लस टू बेसिस ते किहो जी जॉब मिल सकती है बिना कोई स्किल तो बिना
1: हाँ जी
0: कोई ऐसी कोई उन्हां कोले स्किल भी नहीं है ठीक है। कंप्यूटर दा जे उन्हां नूं कोई पुछ लैंदा है तां कंप्यूटर सिख्या सी बट हुण भुल गए आ तां
1: हाँ जी
0: तुसीं खुद सोचो कि इहो जा की इहो जी केड़ी जॉब है और उन्हां नूं जॉब चाहीदी है किसी ऑफिस दे विच बैठन वाली जॉब होनी चाहीदी है जी कंप्यूटर वाली जॉब होनी चाहीदी है कंप्यूटर आंदा नहीं है जी
1: आउंदा नहीं है
0: तां कितना पॉसिबल हो सकदा है कि ओह 12वीं तो बाद एक अच्छी जगह ते सेटल हो सकदे ने
1: सही गल
0: बिल्कुल
1: है।
0: नहीं है।
1: हाँ जी
0: हाँ कुछ कोर्सेज ऐसे हैगे ने
1: हाँ
0: जेडे वो
1: जी
0: करके 12वीं या फिर 12वीं तो बाद ग्रेजुएशन दे नाल नाल अगर ओह चीजां कर लैण तां ओह बिल्कुल जल्दी बहुत ही जल्दी सफलता हासिल कर सकदे ने तां मैं ओह जरूर इत्थे डिस्कस करना चाहूंगी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जिवें कि बच्चा 10वीं या 12वीं पढ़ रहा है और उदा एम है गवर्नमेंट जॉब लेनी है उन्हें सरकारी नौकरी लेनी है ठीक
1: हाँ
0: है
1: जी
0: तां या फिर बस उन्हें नौकरी लेनी है
1: हाँ
0: मान
1: जी
0: लो
1: हाँ
0: कोई
1: जी
0: भी बच्चा उन्हें नौकरी लेनी है
1: नौकरी
0: बस
1: लेनी है।
0: नौकरी लेनी है
1: हाँ
0: तां
1: जी
0: ओदे लई देखो सब तो बेस्ट ऑप्शन की है कि वो 12वीं तक अगर वो आर्ट्स दे विच पढ़ना है सही मान लो कि वो स्टडीज दे विच ठीक ठाक है पढ़ने लई ठीक है वो आर्ट्स दे विच प्लस टू कर रहे हैं

0: जी
1: उस तो बाद वो ग्रेजुएशन करेगा, तो ओदे कोलो 3 साल दे विच, अगर वो 3 साल अपनी ग्रेजुएशन दे नाल नाल
0: हाँ जी
1: कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दी तैयारी करना शुरू कर लवे, जेडे कि
0: अच्छा जी
1: एसएससी दे थ्रू हुंदे हैं, या फिर बैंक एग्जाम हुंदे, बैंक दे क्लैरिकल दे एग्जाम हुंदे, बैंक पीओ दे एग्जाम्स हुंदे हैं,
0: हाँ
1: ठीक है,
0: जी
1: तां उन्हां दी तैयारी करना शुरू कर लवे बच्चा, तां
0: ठीक
1: भी
0: है जी
1: बहुत बेस्ट है। क्योंकि देखो 3 साल जेडे ग्रेजुएशन बेसिस दे जिन्ने भी टेस्ट मैं तुहानू दस रही हां हुण, तां
0: हाँ
1: सारे
0: जी
1: ही मोस्टली जेडे हैं इन्हां दा सिलेबस जेड़ा है तकरीबन तकरीबन सेम ही हुंदा सब दा,
0: अच्छा जी
1: तां रीजनिंग पार्ट हो गया, जीके, करंट अफेयर, इदां दा ही सिलेबस, थोड़ी बहुत ही वेरिएशन जरूर हुंदी है, बट इह सारा सिलेबस जेड़ा इन्हां दा सेम ही हुंदा है।
0: अच्छा जी
1: अगर बच्चे अपने 3 सालां दी ग्रेजुएशन दे नाल हर रोज 2 घंटे खुद सेल्फ स्टडी करके उस सिलेबस जो जेडे जिन्ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आंदे ने सब दा सिलेबस ले लैन,
0: हाँ जी हाँ जी
1: तकरीबन तकरीबन जेड़ा कि सेम ही है, वो 2 घंटे भी उस तैयारी उसकी तैयारी 3 साल तक करनगे, तो तुसी अंदाजा लगा लो कि उन्हां दे जो सक्सेस चांसेस हैं वो किन्ने ज्यादा बढ़ जाएंगे,
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: सिलेक्शन दे चांसेस किन्ने ज्यादा बढ़ जाएंगे।
0: सही गल है जी
1: हाँ, तो वो ग्रेजुएशन दे नाल नाल कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी तैयारी जरूर करना शुरू कर दें।
0: बिल्कुल जी एक
1: बट
0: मैडम हाँ जी
1: हाँ जी, बट अगेन ना अपने च ये चीज दी कमी है साडे मोस्टली जेड़ा साडा पेंडू तबका है, साडे जेड़े विलेजेस च रहंदी यूथ है,
0: हाँ जी
1: उन्हां नू ना इस चीज दी अवेयरनेस ही नहीं है कि केड़े केड़े सरकारी नौकरियां निकलदियां ने, केड़े केड़े टेस्ट हुंदे ने सरकारी नौकरियां नू लैण दे लई, ठीक है, तो वो चीज दी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है।
0: हाँ बिल्कुल ये तो जरूरी है जे पता ही
1: हाँ
0: नहीं है
1: जी,
0: तो करेंगे की
1: हाँ बिल्कुल, तो हुण जेड़ा मैं तुहानू पहला सब इस दे बिटवीन ही मैं तुहानू एक साडा जो एक्टिविटी शेयर कीती सीगी कि असी अपने कैंडिडेट्स दी लिस्ट निकालदे हां और उन्हां नू अवेयर करदे हां, उन्हां नू बल्क मैसेजेस दे थ्रू उन्हां नू अवेयरनेस दिंदे हां कि
0: हाँ
1: ए
0: जी
1: वाले टेस्ट निकले हुए ने, तुसी अप्लाई कर सकते हो,
0: अच्छा जी
1: तां इसी तरीके दे नाल ए चीज दे विच असी कम कर रहे हां। बट यही है कि साडे कोल जद तक यूथ खुद चल के साडे कोल आके पुछेगी नहीं या उन्हां दे खुद अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं होएगा कुछ करन दा, तां उदों तक साडियां जेहड़ियां कोशिशां नहीं कामयाब नहीं हो
0: नहीं हो
1: सकदियां, जद तक
0: सकदियाँ
1: यूथ खुद नहीं मोटिवेट हुंदी कम करन दे लई या
0: बिल्कुल जी
1: फिर तैयारी करन दे लई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी।
0: बिल्कुल जी मैडम साहिबाना जी तुहाडियां गल्लां बड़ियां कीमती ने जो लगातार सुनते रहना चाहिए है पर समा जिड़ा हैगा वो सानू इजाजत नहीं दिंदा कि आपां
1: हाँ जी,
0: होर इन्हां गल्लां नू सुनते रहिए ये गल्लबात आपां करते रहिए विचार चर्चा करते रहिए सो अज दा जिहड़ा समा साडा वो समाप्त हुंदा है तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद तुसीं बड़ियां कीमती गल्लां साडे स्रोतियां दे नाल सांझियां कीतियां
1: जी
0: हुण वेला हो गया प्रोग्राम नूं समाप्त करन दा
1: हाँ
0: रेडियो दुआबा
1: हाँ जी,
0: ते स्रोतियां दा मैं धन्नवाद करदा जिन्हां ने साडे प्रोग्राम नूं बड़े वधिया तरीके नाल सुणिया ते उम्मीद करदे हां इन्हां गल्लां नूं सुण के इन्हां नूं अपना के ते अपनी जिहड़ी जिंदगी है अपना भविष्य है उहनूं बेहतर बनाउण वल वधोंगे तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद शुक्रिया जी
1: थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।

कली बैठी हैं मैं लेके आसार, एक बारी मिले सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा, एक बारी मिले सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे, झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे, झूठे नल कीता प्यार वे रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना, एक बारी मिल सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा, एक बारी मिल सजना काल दा निशाना मेरे सिरे उत्ते वजना, सिरे उत्ते वजना कड़े है जड़ा उन्हें एक दिन पजना, एक दिन पजना एक

हर एक मंजर बिना बोले जो तू कहता उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे हैं मन ने। पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती मेरे संग चल, चले हैं सब चले जाते

है लिखे जो मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं लिखे जो मन ने ये हरियाली भरी वादी ये फूलों से

लुक लुक के सौदे करना है, लुक लुक के सौदे करना है, बिन मेहनत बोझे पर्दा है, लुक लुक के सौदे।

मैनू दे के थोड़ा जहर जावी, नी मैं बुरा बुरियाइयां नू तू हमेशा याद रखी।

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रेहानी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया दारोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मेरे कुप हो नेरे नू

दिन रात मेहनता करदे हां, मजदूर पक्की सरकारां होण जे फिर खुदकुशियां क्यों करदे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक

करके मैनू याद, रोया करेंगी तू, हाय करके मैनू याद। बदलां दे विच, बदलां दे विच चन्न जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन्नी जदों मुस्कुराएगा, चेहरा मेरा फेर तैनू

का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना, हाँ जिंदगी ये कह

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ जिंदगी ये कहेगा तू गाना, हंसते गाते दिन बिताना। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ जिंदगी ये कहेगा तू गाना, हंसते गाते दिन बिताना। ला ला ला ला ला ला ला ला ला।

वेखो तुसी साका जल्ले आदे बागदा होया सी जुल्मे उठे खूनी रागदा ऊदम जहे जोदे उड़वारा।

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

मैनू दे के थोड़ा जहर जावी, नी मैं बुरा बुरिया नू तू हमेशा याद रखी, नी मेरे बेले आबाद ना होवन तू अपने बेले आबाद रखी। जेकर मैनू मिलना होया मेरी मड़ी ते पिछले पैर जावी, नी मैथों वक्ख होवन तो पहला मैनू दे के थोड़ा जहर जावी।

दिन रात मेहनता कर दे हां मजदूर पक्की सरकारा होन जे फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक